0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी बहन भाइयों का नमस्कार।
4: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं और वही कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जिससे हमारे कृषि जीवन में, हमारे युवा जीवन में ऐसी राहें खुलती रहें जो हमें रोजगार के संसाधन अपने आसपास उपलब्ध कराती रहें।
3: आपने रोजगार की बात तो बहुत सही कही है अमित, क्योंकि हर कोई युवा यही चाहता है कि उसके हाथ में रोजगार हो। यदि उसके हाथ में रोजगार होगा तो स्वाभिमान भी उसके अंदर होगा और जब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास होगा तो हमारे भारत का नव निर्माण होगा। और जब योजना की बात करते हैं तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये भारत सरकार की एक योजना है और मत्स्य क्षेत्र के विकास की प्रमुख योजना इसे हम कह सकते हैं। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
4: बिल्कुल आपने सही कहा कमलेश, क्योंकि भाई रोजगार की जब बात आती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्तंभ सिद्ध होती है हमारे युवाओं के लिए। और जो हमारे लाभार्थी हैं, यदि हम महिलाओं की बात करें, आरक्षित वर्ग की बात करें, तो इसमें अनुदान भी दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और मछली परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास भी हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, और इसके साथ साथ मछली उत्पादन से आप जुड़े हुए हैं तो उत्पादन को बढ़ाना और जो आपका नुकसान हुआ है उसको कम करना, मूल्यवर्धन को करना और जो आपकी बाजार व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है।
4: इस योजना से जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और बैंकों में इसके अनुदान की व्यवस्था की गई है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक बनके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों का सामाजिक विकास चाहती है और उनका आर्थिक कल्याण चाहती है।
4: बिल्कुल यही उद्देश्य है इस योजना का मित्रों। और कार्यक्रम किसान वाणी में जब हम कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की सलाह आप तक पहुंचे, आप उसके अनुसार अपने कृषि कार्य को करें, तो निश्चित ही नव भारत का निर्माण होता है।
3: फूल जो है वो हमारे जीवन में केवल रंग ही नहीं

0: केवल खुशबू ही नहीं बढ़ते बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, जो हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती कर रहे हैं या ऐसे हमारे साथी जो फूलों की खेती करना चाहते हैं, कोशिश है कि कहीं से कोई आधार मिले, कोई जानकारी मिले, तो आज किसान वाणी कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा विषय है फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर ऋतु जैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
0: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: जब बात की मैंने फूलों की खेती की तो ये क्यों महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमें खाने के लिए गेहूं, दाल, चना, सब्जी, सब चीजें इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारी आत्मा को खुश रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए फूलों की बहुत जरूरत है। तो फूल एक ऐसी चीज है जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है और हमें खुश कर देती है। साथ ही साथ फूलों का मनोवैज्ञानिक जो है हमारे ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। आप ये देखिए, कभी भी आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं, एक फूलों का गुच्छा ले जाइए तो वो कितना खुश महसूस करता है। तो फूल जो है सिर्फ इसी चीजों के लिए नहीं, फूल हमारे किसी भी त्योहार में, शादी में, विवाह में, पर्व में, साथ ही साथ कोई आपकी राजनीतिक रैली है, कोई आपका धार्मिक आयोजन है, इसके अलावा आपके होटल में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, विभिन्न विभिन्न जगह पर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए किसानों की आय का ये एक बहुत बड़ा साधन है, तो इसलिए फूलों की खेती करना बहुत आवश्यक है,
0: क्योंकि पूरे साल ही जो है फूलों की मांग रहती है और हर कोई चाहता है कि हर मौसम में वो फूल उनको उपलब्ध हो जाए। तो जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में जो नवाचार है उससे हम क्या समझे?
2: देखिए, जहां तक हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में तो हम बहुत तरह के फूल उगा सकते हैं, चाहे वो कट फ्लावर हो, चाहे वो लूज फ्लावर हो, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो। पर जब हम बात करते हैं नवाचार की, नवाचार का मतलब है कुछ भी नई तकनीक कहां में फूलों को उगाने के लिए इस्तेमाल करना। तो हम उसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हम बात करें टपक सिंचाई की, चाहे हम माइक्रो इरिगेशन बोलें उसको, या फिर हम सेंसर का इस्तेमाल बोलें, चाहे हम मल्चिंग की बात करें, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें? तो इन सब चीजों के लिए हम बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पौधे उगा सके, तो वो पॉटेड प्लांट उगाते हैं, या फिर वो नर्सरी की बात कर सकते हैं कि नर्सरी आप किस तरह से उगाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, नए नए हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नवाचार के आयाम है। इनफैक्ट इसके अलावा फूलों को कैसे काटना है और फूलों को किस समय हमें कैसे उनको श्रेणीकरण करना है, उनको कैसे मार्केट में भेजना है, उन सब चीजों के लिए बहुत सारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: जी, अभी आपने बात की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: जैसे हम बात कर रहे थे नवाचार की, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब कि हम कुछ भी नई टेक्निक लेकर आते हैं। जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, ग्रोइंग मीडिया जो है, सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया की बात करें जिसमें मिट्टी नहीं होती, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी बालकनी में पौधे उगाने हैं, छत पे पौधे उगाने हैं, तो छत हमारी ऐसी है या बालकनी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा भार मिट्टी का बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम सॉइललेस मीडिया जिसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, रॉक वूल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो लेका बॉल्स आती हैं, जो लेका बॉल्स हैं वो बहुत ही हल्की बॉल्स होती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं पौधों को उगाने के लिए छत के ऊपर। या आपने देखा होगा अगर आप एयरपोर्ट जाए या कहीं बड़े बड़े मॉल्स में जाए तो बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, उसके साथ में छोटी छोटी भूरे रंग की बॉल्स होती हैं।
0: जी,
2: तो वो क्या करती हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, आपका पानी का वाष्पीकरण कम होता है। उनमें मिट्टी नहीं है तो कोई कीट और व्याधि होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि फफूंद वगैरह का या कोई रोग उनको नहीं लगता। साथ ही साथ पौधा उसमें स्वस्थ रहता है और समय समय पर हम अगर उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते रहें, पोषक तत्व है जो कि आप सिंगल न्यूट्रिएंट के जैसे भी डाल सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाकर भी उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ नवाचार की बात कर रहे हैं या इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, फूलों को जब कटाई करते हैं तो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर भी हम संरक्षित खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस हैं, वहां पर रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फूलों को काटने के लिए। मतलब कि कली की जो अवस्था है खुलने की या उसका कली का जो रंग है वो दिख रहा है, तो वो सब चीजें चीजें रोबोट से देखकर या एआई का इस्तेमाल करके उसे काटी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि फसल देखनी है आपको, कहीं फसल में कोई व्याधि तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो गया, तो बहुत सारी जो फिनोमिक्स टेक्निक्स होती है, मतलब फोटो ले लेकर देखा जाता है कि कहां पर जो हमारा पौधा है वो क्षतिग्रस्त है, तो उस तरह की चीजों को भी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के
0: शामिल किया जाता
2: है। जी जी बिल्कुल जी।
0: और जब हम बात करते हैं विविधीकरण के आयाम, तो इससे जो हमारे श्रोता है वो क्या समझे?
2: जी देखिए, फूलों की खेती सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाने तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम बात करें गेंदे की, सबसे ज्यादा जो एक आम आदमी समझता है वो गेंदे का फूल या गुलाब का फूल, या तो हम उसको माला के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुले फूल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, और या फिर जो गुलाब है उसको कट फ्लावर के लिए भी देते हैं कि किसी को गिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल हैं जो पूरा वर्ष भर उगाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें विविधीकरण में आवश्यकता है ये जानने की कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केट में किस समय पे किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सभी लोग गेंदे की खेती या गुलाब की खेती एक समय करने लगे तो उससे किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा मार्केट में एकदम ग्लट आ जाएगा और ग्लट आने से रेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कट फ्लावर की अलग अलग क्रॉप्स जैसे जूही, चमेली, गुलाब, गुलदाउदी, बबूना और गेलाडिया, चाइना एस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में हम रहते हैं उस तरह की क्रॉप्स उगाएं। साथ ही साथ कट फ्लावर के क्रॉप्स जैसे गुलाब है, गुलाब के बाद कार्नेशन है, ग्लैडियोलस है, ट्यूबरोज है, ऑर्किड्स हैं, जर्बरा है, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं एक तो हम उसको उगाएं। ये तो होगी फ्लावर की खेती की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन, लोगों को पौधे तैयार ना करने पड़े और वो पौध उनको मिल जाए ताकि वो रेडीमेड उसको लगा सके, चाहे वो लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए लगाएं, चाहे वो अपने इस्तेमाल के लिए लगाएं। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल, पौध सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अच्छे बीज मिलना, अच्छे कंद मिलना ये और अच्छे बल्ब मिलना ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो उस तरह की पौध सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा मूल्य संवर्धन कर सकते हैं
0: जी।
2: जो हमारे पास मार्केट में ग्लट आ गया है, हमारे जो सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो उसके बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम है, इत्र है, साथ ही साथ अगरबत्ती है और गुलाब जल है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, शैम्पू है, बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन है और ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं। साथ ही साथ एक टर्फ ग्रास की बात करूंगी, लॉन ग्रास, वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, हम मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो ये लॉन घास होता है आप देखेंगे हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हों, चाहे वो आपके बड़े खेल के मैदान हों, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, नए फ्लैट्स, नई कॉलोनीज कट रही है, सब जगह टर्फ ग्रास का इस्तेमाल होता है। तो टर्फ ग्रास भी एक अच्छा आयाम है जिसके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं फ्लोरिकल्चर के साथ, वो ये कर सकते हैं।
0: और आजकल तो डॉक्टर साहब हर कोई ये बोलता है कि हम डिजिटल हो गए हैं, तो जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल और स्मार्ट कृषि के अंतर्गत फूलों की खेती को हम रखकर देख सकते हैं क्या?
2: जी बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे डिजिटल और स्मार्ट खेती हर एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो सबसे ज्यादा डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन में, कि इरिगेशन किस तरह का होना चाहिए। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमें कभी तो स्प्रिंकलर इरिगेशन चाहिए होता है, तो कभी तो ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है, तो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम कि इस इतने दिन तक हमें ये देना है, उसके बाद हमें ये टेक्नोलॉजी फॉलो करनी। उसके अलावा रोबोट जो है वो देखेगा पौधों को कि किसी में कोई बीमार पौधा तो नहीं है, कोई खराब पौधा तो नहीं है, किसी की क्वालिटी खराब तो नहीं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले तो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, उसके बाद लिक्विड वो देते थे, तो वो भी अब टपक सिंचाई से माइक्रो इरिगेशन के साथ देना है, कितने घंटे के बाद देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, नाइट्रोजन कब देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब देना है, फॉस्फोरस कब देना है, पोटाश कब देना है, तो ये सब जो चीजें हैं वो स्वचालित तरीके से आपके स्मार्ट खेती के अंतर्गत आती हैं, तो इनका इस्तेमाल खूब आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल खेती सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, आप अपनी फसल को, अपनी उपज को बेचने लिए भी उसका इस्तेमाल करें
0: जी।
2: बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिनको हम सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देके, अपनी रील्स बना के, अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करके उन सब चीजों को आप बेच सकते हैं, कुछ समूह बना सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजिटल एरा है, क्योंकि अब आने वाला एरा तो डिजिटल एरा ही है, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें।
0: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई कि जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी खेती है उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और अब बात करते हैं कोल्ड चेन की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, कोल्ड चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि जो फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और हमें कटाई से लेकर जब तक वो अल्टीमेटली रिटेलर के कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाते, मतलब कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हमें कोल्ड चेन का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारा फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, फ्लावर की लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, ज्यादा दिन तक आपका फूल चलेगा, साथ ही साथ उपभोक्ता को अच्छा फूल मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, आपको अच्छा प्राइस देगा। तो कोल्ड चेन मतलब आपने फूल काटा और काटने के बाद इमीडिएटली उसको आपने ठंडे पानी की बाल्टी में रखा, उसके बाद उसको आप पैकिंग हाउस में लेगा जहां पर एक प्रॉपर कोल्ड चेन या कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वहां पर उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग सब अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन की जा रही है। उसके बाद जब पैकेजिंग हो गया तो पैकेजिंग करके उसको हम फिर कोल्ड स्टोरेज में फ्लावर को रखेंगे जब तक कि वो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन हमें रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब वो होलसेलर के पास पहुंचता है, चाहे वो रिटेलर के पास पहुंचता है, वहां जाकर भी वो ठंडे स्थान पर ही उसको अगर स्टोर करेंगे तभी फूलों का प्राइस भी अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और हमारी जो एक मंशा है कि कोल्ड चेन से क्वालिटी अच्छी बढ़ जाए तो वो भी किया जा सकता है।
0: और डॉक्टर साहब, जब आपने अभी कोल्ड चेन की आप और हम बात कर रहे थे, सुनकर लग रहा है कि ये तो काफी महंगा होगा और एक जो किसान है वो इतनी महंगी चीजों को या इतना जो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, तो क्या ये मिलकर बनाना होगा या इसका भी कुछ ऐसा प्रबंध है कि किराए के हिसाब से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं?
2: जी देखिए, कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो एक अकेले किसान के लिए करना ये संभव नहीं है। अगर हम छोटे सीमांत किसान की बात करें तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर एक समूह बनाकर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसको किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अनुदान भी देती हैं, 60-70% के करीब अनुदान भी मिलता है। तो आप NHB हो या कोई एपीडा हो, ये बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे अगर किसान हमारा बात करें तो उनको अनुदान भी मिल सकता है, तो वो ये सब फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं।
0: जी, अगर मान लीजिए कि हमारे कार्यक्रम सुनकर कोई किसान भाई खेती करना चाहता है, फूलों की खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना होगा, कैसे अपनी एक प्लानिंग करनी होगी?
2: जी देखिए, सबसे पहले किसान को ये देखना है कि उसके आसपास की मार्केट क्या है, मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट में फूलों की जरूरत है क्या, है क्या नहीं। उसके बाद उसको अपना क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप ग्रो करनी है, उसको अपना सॉइल टेस्टिंग कराना है, वाटर टेस्टिंग कराना है, मिट्टी और पानी की जांच के बाद उसको ये देखना है कि यहाँ के लिए कौन सी सूटेबल क्रॉप्स हैं, किसी एक विशेषज्ञ की सलाह लेकर वो उगाए। और उसके बाद मैं तो ये कहना चाहूंगी कि खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण ले ले, चाहे किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ले ले या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय है वहां से ले सकते हैं, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर भी आकर वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं।
0: जी, अब उसको बाजार तो मिल गया है, उसके बाद में क्रॉप जो है वो कहाँ से मिलेगी या बीजों की उपलब्धता जो है वो कहाँ से वो लेकर आएगा, और उसके बाद में उनको जैसे कोल्ड चेन वाली बात की गई है तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, इसके बारे में भी आप हमें बताएं।
2: जी देखिए, बात है जहां तक कि क्रॉप कौन सी उगानी है वो तो उस एरिया की जलवायु और पानी के ऊपर और मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा। आपने लूज फ्लावर उगाना है या कट फ्लावर उगाना है, पहले तो ये हमें डिसाइड करना है। तो लूज फ्लावर उगाना है तो उसके लिए हम गेंदा उगा सकते हैं, गिलाडिया उगा सकते हैं, हम रजनीगंधा उगा सकते हैं, हम गुलाब उगा सकते हैं, तो इस तरह की फसलों का हम चयन कर सकते हैं, या फिर बबूना उगा सकते हैं, गुलदाउदी उगा सकते हैं। तो ये सब फसलें हैं जो कि बहुत अच्छे फूल देती हैं। तो इनका जो बीज है, इनके बीज की उपलब्धता जो पास का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, एक तो वहां से हमें बीज मिल सकते हैं या किसी सत्यापित नर्सरी से बीज लिया जा सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, या फिर जो भी केंद्रीय संस्थान है आसपास में जो कि फूलों पे काम करते हैं वहां से बीज लिया जा सकता है। जैसे हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इस वक्त अगर हम गेंदे की बात करें तो हमारे पास 5-6 जो किस्में हैं गेंदे की वो ली जा सकती हैं और उसकी अलग अलग समय पर खेती होती है। तो इन सब चीजों का मेरा मानना है कि किसान अगर किसी विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वहां से वो पूरी जानकारी भी मिलेगी, कैसे करना है सब उसको मिल जाएगा। उसके बाद बात की आपने कोल्ड स्टोरेज की। देखिए, कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हमारी मार्केट दूर हो, नजदीक मार्केट है जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है और हम गाजीपुर तक भेज रहे हैं और लूज फ्लावर है तो इतना बहुत ज्यादा हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर कहीं पर आपको फसल जो है स्टोर करनी है, आपकी आज डिमांड नहीं है, मान लीजिए कोई त्योहार है, दो दिन के बाद आपको अच्छा प्राइस मिलने वाला है मार्केट में, तो आपको कोल्ड स्टोर की और कोल्ड चेन की आवश्यकता है और उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे कि आप चाहे तो सरकारी संस्थान से अनुदान लें, चाहे तो आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, इस तरह के प्रयास करके किसान जो है लाभ उठा सकता है।
0: तो चलते चलते जो हम बार बार AI की बात करते हैं तो AI का क्या महत्व है?
2: जी देखिए AI

0: मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कभी कभी हमसे चूक जाते हैं देखने के लिए, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हर प्रोग्राम एक फिक्स होता है, कोई चीज देखना है इतनी डिग्री पे ही देखना है, इतने एंगल पे देखना है, यही कलर होना चाहिए, यही RGB स्कीम होनी चाहिए, इतने ही सेकेंड में वो टेस्ट पास होना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है आपको मदद करती हैं आपका काम आसान करने के लिए। जो चीजें आप आंख से कई बार चूक जाते हैं तो वो आप AI के माध्यम से देख सकते हैं। AI आपको ये भी बता देगा कि आपको पौधे में क्या डिजीज लगी है, AI से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी हुई आपके पौधे को, उसका क्या निदान है, और आपको अगर बीमारी ही पता चल जाए तो उसके लिए आपको ये बता देगा कि आपको ये पौधा रखना है नहीं रखना है, कितना फसल के लिए हानिकारक है या नहीं है। साथ में रोबोटिक्स का इस्तेमाल, जो वो भी AI से ही चलते हैं, स्वचालित जिसे हम कहते हैं, उसके बाद AI का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए भी कर सकते हैं, आप नए नए क्या प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस सब चीजों के लिए भी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम, और इस पर विस्तृत जानकारी दे रही थी डॉक्टर ऋतु जैन, जो प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में।
2: बिल्कुल कमलेश जी, ये तो बात रही कार्यक्रम में बातचीत, जिससे हमारे कहीं ना कहीं साथी जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि फूलों की खेती में जब हम वैज्ञानिक सोच लेकर के आते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, लागत मूल्य कम लगता है। वहीं कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवाएंगे एक रागनी कलाकार रविंद्र खालोर।

0: मित्रों, ये आप रागनी सुन रहे थे रविंद्र खालोर की आवाज में।
1: हमारी जो कृषि है वो मौसम पर ही आधारित है। जब हम किसान भाइयों को मौसम का पूर्वा अनुमान बता देते हैं तो उससे उनको फायदा ही होता है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से साफ और धूप वाला मौसम रहेगा। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर हम वर्षा की बात करें तो बारिश की संभावना ना के बराबर है।
0: मित्रों, जब मौसम का पूर्वानुमान कार्यक्रम में आप तक पहुंच जाता है तो वही बात आती है हमारे किसान भाइयों के लिए। वैज्ञानिकों की कृषि सलाह के द्वारा की गई खेतीबाड़ी से निश्चित ही हम अधिकतम लाभ लेते हैं और हमारा उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुख्य फसलों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है। यदि सितंबर के बचे हुए दिनों की हम बात करें तो इस समय धान की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि जो अगेती धान की वैरायटी है वो पकने की कगार पर है, और कृषि मंत्रालय ने सलाह दी है कि कटाई में बिल्कुल भी किसान भाई जल्दबाजी ना करें, अनाज को अच्छी तरह पकने दें ताकि मंडियों में अधिक नमी के कारण फसल रिजेक्ट ना हो।
1: जिन किसान भाइयों ने इस समय सोयाबीन की खेती की हुई है उनके लिए सलाह दी जाती है, अगेती किस्में जो पक रही हैं और पछेती किस्में फलियां भरने की महत्वपूर्ण अवस्था में हैं, और जब 90% फलियां पीली पड़ जाएं तो अगेती किस्मों की कटाई तुरंत कर लें ताकि अचानक बारिश होने पर दाने खराब ना हो।
0: बिल्कुल, और वहीं जब बात कीट नियंत्रण की है तो भाई तंबाकू की इल्ली और गर्डल बीटल के प्रकोप पर भी नजर रखें। सब्जियां और रबी की तैयारी वे किसान भाई ध्यान दें, वर्तमान मौसम अगेती मटर की बुवाई के लिए बेहद अनुकूल है। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए बुवाई से पहले बीजों को कैप्टन या थीरम जैसी फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित अवश्य करें। तो मित्रों, ये थी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए।
1: और हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन है, जब हम किसान वाणी कार्यक्रम लेकर आते हैं तो देखो कितने सारे आयाम हम अपने कार्यक्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, ये तो तभी पता चलेगा जो हमें फीडबैक मिलेगा। तो जब फीडबैक की बात करते हैं तो क्यों ना श्रोताओं को अपना ईमेल आईडी भी बता दें। वो हमारे ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आप अपने जो भी विचार हैं या और इस कार्यक्रम में आप क्या चाहते हैं वो सुझाव आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।
0: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। हर ज

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गईं।

0: छावड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare them for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Ayush is advancing the use of artificial intelligence in Ayurveda and other Ayush systems, building on the Ayush Grid digital platform. The Ministry has been exploring AI across healthcare, research, education, information services and investment facilitation with an emerging ecosystem that includes both specialized AI applications and broader collaborations with national AI initiatives. AI-based chatbots including MAISP, eLMS and eCharak along with ARP Research Assistant are being developed for citizens, researchers, students, medicinal plant trade, yoga and

0: जिंदगी में सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा लम्हा यही होता है जब वो तिरंगे को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया के सामने चलते हैं।
1: पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ हमारे तिरंगे को थामकर आत्मविश्वास के साथ साफ नजर आ रही थी। और जब हमारी कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ तिरंगे को थामे रखा था और मुस्कुराते हुए 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व किया, उसके बाद उद्घाटन समारोह के बाद हमारे स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: When I got to know yesterday, so I had all these flashback memories of my earlier days. And when I started, कभी भी नहीं सोचा था कि this is where I can reach in one day in my sport. So it definitely, it's like a very heartwarming feeling. It's I feel really proud. I feel really honored, and I really, really feel so happy being chosen as the flag bearer of my homeland.
1: कबड्डी किंग पवन सहरावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: तो ये मेरे लिए बहुत प्राउडली मूवमेंट, अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपने नेशन का फ्लैग अपने हाथ में लेके चलूंगा। मैं उनसे पहले भी एक बार मिला हूँ, काफी मोटिवेटेड एथलीट है। मेरे लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ मैं फ्लैग बैरियर में साथ जाऊंगा, वुमेन का वो कर रहे हैं, मैन का मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है इतनी बड़ी एथलीट के साथ जाऊँ।
1: श्रोताओं, रुख करते हैं खेल के मैदानों का। आज एशियाई खेलों के उद्घाटन की चमचमाती शाम से पहले मैदान पर हमारे एथलीटों ने पदक की पहली जंग भी लड़ी। दरअसल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बने खेल टेक बॉल में

0: जिंदगी में सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा लम्हा यही होता है जब वो तिरंगे को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया के सामने चलते हैं।
1: पेरिस ओलंपिक की हमारी डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ हमारे तिरंगे को थामकर आत्मविश्वास के साथ साफ नजर आ रही थी। और जब हमारी कबड्डी के किंग पवन सहरावत ने पूरे गर्व के साथ तिरंगे को थामे रखा था और मुस्कुराते हुए 501 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व किया, उसके बाद उद्घाटन समारोह के बाद हमारे स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: When I got to know yesterday, so I had all these flashback memories of my earlier days. And when I started, कभी भी नहीं सोचा था कि this is where I can reach in one day in my sport. So it definitely, it's like a very heartwarming feeling. It's I feel really proud. I feel really honored, and I really, really feel so happy being chosen as the flag bearer of my homeland.
1: कबड्डी किंग पवन सहरावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: तो ये मेरे लिए बहुत प्राउडली मूवमेंट, अभी भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अपने नेशन का फ्लैग अपने हाथ में लेके चलूंगा। मैं उनसे पहले भी एक बार मिला हूँ, काफी मोटिवेटेड एथलीट है। मेरे लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ मैं फ्लैग बैरियर में साथ जाऊंगा, वुमेन का वो कर रहे हैं, मैन का मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है इतनी बड़ी एथलीट के साथ जाऊँ।
1: श्रोताओं, रुख करते हैं खेल के मैदानों का। आज एशियाई खेलों के उद्घाटन की चमचमाती शाम से पहले मैदान पर हमारे एथलीटों ने पदक की पहली जंग भी लड़ी। दरअसल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बने खेल टेक बॉल में
4: जया, अगर कल मुकाबलों की बात की जाए तो हॉकी के भारत के कल मुकाबले खेले जाने हैं, जहां सुबह 7:30 बजे भारत की महिला टीम पूल बी में उज्बेकिस्तान से खेलेगी, जबकि पुरुष टीम पूल ए में इंडोनेशिया के खिलाफ 11:30 बजे अपना मुकाबला खेलेगी। बैडमिंटन कोर्ट में कल भारतीय महिला टीम अपने अंतिम 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेलेगी, जहां सुबह करीब 11:30 बजे भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा, सुबह 10:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। मार्शल आर्ट महिला ट्रेडिशनल में 60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में सुरुचि तरियाल का मुकाबला जो है मंगोलिया की खिलाड़ी से होना है, यह मैच सुबह 7:10 पे होगा। वहीं पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में वरुण सान्याल का मुकाबला खेला जाना, यह मुकाबला दोपहर करीब 2 बजे होगा। निशानेबाजी में कल कई भारतीय खिलाड़ी आपको निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। जया, महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में इला वैनिल वालावेरिन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 6:15 बजे पदक के लिए मुकाबला करते हुए दिखेंगे, जबकि महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में इला वैनिल वालारविन, सोनम मस्कर और विदर्श विनोद सुबह 11:00 बजे क्वालिफाइंग करेंगे और उसके बाद पदक के मुकाबलों के लिए दाव पेश करेंगे। टेकबॉल में भारतीय महिला सिंगल्स टीम अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी, जिसमें क्विम्समी डिसूजा का मुकाबला युइना साकामोटो से होगा, जो कि जापान की खिलाड़ी है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है उन्होंने। ये मुकाबला सुबह करीब 6:30 बजे खेला जाना है। मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक मुकाबला क्विम्स्की डिसूजा मोहम्मद अनस बेग और की जो जोड़ी है, इसका मुकाबला होगा हुआंग मी तान गुएन जिया निंग त्रियान, वियतनाम के इन दोनों खिलाड़ियों से। ये मैच सुबह 7:00 बजे खेला जाना है। तो जया, ये है कल के मुकाबलों का हाल।
1: बहुत बहुत शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईची नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को उन पर गर्व है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। श्रोताओं, रुख करते हैं उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद का, जहां इस समय 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का चौथा दौर खेला जा रहा है। कल रात जब हम कार्यक्रम के अंत तक तीसरे दौर का मैच की बात कर रहे थे, तब मैच निर्णायक मोड़ पर था और तब मैंने कहा था कि कभी भी परिणाम भारत के पक्ष में आ सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। कल पुरुष टीम ने इटली को 3-1 से और महिला टीम ने ग्रीस को 3.5 के मुकाबले आधे अंक से हराकर समरकंद में भारत को दोहरी जीत दिलाई। कल रात अंतिम बोर्ड नतीजों में डी गुकेश और निहाल सरीन ने अपने मुकाबले शानदार तरीके से जीते, जबकि आर प्रज्ञानंदा अर्जुन एरिगेस

0: और महिला वर्ग में दिव्या देशमुख ने अपने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। लेकिन आज इस समय एक और अच्छी खबर आ रही है कि भारतीय पुरुष टीम ने राउंड फोर के बेहद कड़े मुकाबले में स्पेन को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी है और इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश, जिन्होंने बोर्ड नंबर 4 पर स्पेन के दिग्गज और आक्रामक खिलाड़ी अलेक्सी शिरो को एक बेहद रोमांचक एंड गेम में मात देकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ महिला सेक्शन में हमारी भारतीय टीम मंगोलिया के खिलाफ भी बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है और जिसके अंतिम नतीजे थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। शतरंज के इन हमारे जाबाजों ने, इन शेरों ने साबित कर दिया है कि वे अपने स्वर्ण पदक बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंत में बात करेंगे हमारे घरेलू खेल के मैदान की। शिलांग में चल रही नॉर्थ ईस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप आज समाप्त हो गई है और इस प्रतियोगिता की पूरी जानकारी के लिए सुनते हैं शिलांग से हमारी संवाददाता अनुमिता की रिपोर्ट।
1: 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आज शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समापन हुआ। प्रतियोगिता के 5 इंडिविजुअल कैटेगरी में असम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के 270 से अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2027 में मेघालय में होने वाले नेशनल गेम्स की टीम कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी थी। खिलाड़ियों ने इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान अंडर 17, अंडर 19, सीनियर इंडिविजुअल एंड टीम चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मिजोरम और मणिपुर ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मेजबान मेघालय को 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुमिता दास, शिलांग।
0: बिल्कुल, और इसके साथ इस टूर्नामेंट के जरिए असम और मेघालय की टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर कोलंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
6: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
5: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
7: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
5: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
8: I think close to 8 cargo planes have arrived.
9: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
8: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna-Ukai-Songar section of Western Railway. Two-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप

0: सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
0: Bharat aaj duniya ka तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youths under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

गुलशन ग्रोवर का नाम जब भी लिया जाता है तो अक्सर बैडमैन की उनकी इमेज को ज्यादा उभारा जाता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नया गेटअप दिया है।

0: लड़ाया
1: लड़ाया किसने?

गुलशन ग्रोवर मध्यम वर्गीय परिवार से और उनका बचपन दिल्ली में बीता। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक्टिंग का शौक उन्हें लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनके इस शौक को हवा मिली और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कई नाटकों में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुलशन ग्रोवर मुंबई की ओर अपना रुख कर चुके थे और यहाँ आकर उन्होंने फिल्मी ख्वाबों को फिल्मों में अभिनय के जरिए हकीकत में बदलने की ठान ली।

मुंबई में एक्टिंग स्कूल में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और जब तक इंडस्ट्री में काम न मिला तब तक अन्य छात्रों को बतौर टीचर उन्होंने एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके स्टूडेंट में उस समय संजय दत्त भी थे। जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी लॉन्च की थी तो उसने संजय दत्त के दोस्त की भूमिका के लिए उन्होंने गुलशन ग्रोवर को ही सिलेक्ट किया था, यानी गुलशन ग्रोवर की पहली फिल्म थी रॉकी।

गुलशन ग्रोवर शुरू ही से अपनी योग्यता को जानते थे, इसलिए उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए खुद को तैयार किया। हम 5 में उनकी एक्टिंग देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार के लिए गुलशन ग्रोवर को रिकमेंड किया और बाद में सिप्पी फिल्म्स की सदमा और एफसी मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल में गुलशन ग्रोवर ने अपनी अदाकारी की मिसाल कायम की।

0: गुलशन ग्रोवर ने फिल्मकार महेश भट्ट के साथ भी काम किया। फिल्म अर्थ में गुलशन को महेश जी ने छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन बाद की फिल्मों में गुलशन के भीतर के कलाकार को उन्होंने नए अंदाज में पेश किया। इसकी मिसाल थी फिल्म सर। यही नहीं, सुभाष घई ने भी गुलशन ग्रोवर को मौका दिया और पर्दे पर एक अनोखा बैटमैन पेश किया।
1: करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा।

यूं तो गुलशन ग्रोवर ने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में काम किया, जिसमें खास हैं साउथ की फिल्में। लेकिन बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मन, यूके और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया है। फिल्म जंगल बुक ने भी गुलशन ग्रोवर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। फिल्म मारी गोल्ड, जिसे मेरी गोल्ड भी कहा जाता है, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उन्होंने एक नया किरदार पेश किया है। हालांकि सलमान के साथ गुलशन ग्रोवर ने चंद्रमुखी और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम किया था।

दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके पहले सईद जाफरी, कबीर बेदी और परसिस खंबाटा ने भी हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: दोस्तों, आपको याद होगा कि गुलशन ग्रोवर ने यूं तो कई फिल्मों में और भी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन सन 2006 में रिलीज गैंगस्टर, 2010 में रिलीज हुई फिल्में हैं नॉकआउट और प्लेबैक, 2011 में आई एम कलाम और 2012 में एजेंट विनोद में आपने उनका अभिनय जरूर देखा होगा। और फिल्म एजेंट विनोद के बाद भी गुलशन ग्रोवर की अभिनय यात्रा बदस्तूर जारी है। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्म राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा और यारियां फिल्मों में भी देखा होगा। ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत लग जागने। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोइके देमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन से इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसोजा को इंडोनेशिया की सुमाया से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वो यादें बनकर हमारे जीवन को महकाते रहते हैं, जैसे समय कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो। क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं, बल्कि अधूरी यादों में बसकर अमर हो जाते हैं।

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वहीं कुछ आंसुओं से भीगे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके, मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती। दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके, उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।